अभी आपने सुमन मते के स्वर में संत जनाबाई की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में यह भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है बाभ बोरकर की, जिसे गाया है श्रीकांत पारगांवकर ने।

बाबा बोलकर की भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है राजस्थानी की, जिसे गाया है उषा अत्रे ने।

राजस्थानी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उषा अत्रे के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये भक्ति रचना शाहिर साबड़े और सहकारियों के स्वर में।

शाहिर साबड़े और सहकारियों के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना उर्वशी शाह के स्वर में।

उर्वशी शाह ने गाई संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल और सिंधूरा काफी में ठुमरी. आज ही कलाकार हैं सबीना मुमताज इस्लाम. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं चित्तरंजन दोलुई. सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का आरंभ राग जौनपुरी में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में ख्याल गायन. कलाकार Sabina Mumtaz Islam.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning, we present Hindustani vocal recitals. Listen to Khayal in Rag Jaunpuri, followed by Thumri Sindhura Kafi. Our artist is Sabina Mumtaz Islam. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium is Chittaranjan Doloi.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थीं सबीना मुमताज इस्लाम। सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रही हैं सिंदूरा काफी ठुमरी। तो आइए सुनते हैं सिंदूरा काफी ठुमरी, कलाकार सबीना मुमताज इस्लाम।

0: आज ये कलाकार थी सबीना मुमताज इस्लाम। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे चित्तरंजन दोलुई। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। आज ही कलाकार हैं रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन, कलाकार रागेश्री दास।
1: You were listening to Khayal in Raag Jaunpuri, followed by Tumri Sindura Kafi. Our artist was Sabina Mumtaz Islam. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium was Chittaranjan Doloi. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present Khayal in Raag Nat Bhairav. Our artist is Rageshri Das. Accompanying her is Pinaki Chakraborty on the tabla and Sanathan Goswami on the harmonium. Listen now to Khayal in Raag Nat Bhairav by Rageshri Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन राग नट भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज रागेश्री दास। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज पिनाकी चक्रवर्ती एंड ऑन द हारमोनियम वॉज सनातन गोस्वामी। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं विदुषी हीराबाई पड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग ललत। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रैन का सपना, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं सो सो बारी बालमा। आपके साथ तबले पर है चंद्रकांत कामत और सारंगी पर है मधुकर खाडिलकर। तो आइए सुनते हैं विदुषी हीराबाई पड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग ललत।

आप सुन रहे थे विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग ललत। आपके साथ तबले पर थे चंद्रकांत कामत, सारंगी पर थे मधुकर खाडिलकर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग मूलतानी। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल हैं कवन देश गई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं ऐसी कहां प्रीत लगाई। साथ संगत तबले पर सूर्यकांत गोखले और सारंगी पर है अनंत कुंटे। तो आइए सुनते हैं राग मूलतानी, कलाकार विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर।

आप सुन रहे थे विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग मुल्तानी। आपके साथ तबले पर थे सूर्यकांत गोखले और सारंगी की साथ की थी अनंत कुंटे ने। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी 24/7 DTH चैनल पर। भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मानिक वर्मा का गाया राग बागेश्री.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Vidushi Manik Varma. She first presents Rag Bageshri.

0: अभी आप मानिक वर्मा का गाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए इनकी गायी काफी ठुमरी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग बागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी मानिक वर्मा। शी कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विद अ ठुमरी इन राग

0: अभी आप मानिक वर्मा की काफी ठुमरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट ठुमरी इन राग काफी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय विदुई मानिक वर्मा। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कला है सानिया पाटनकर। आपने प्रस्तुत किया राग ललत गौरी सुनते हैं। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है प्रीतम सैया दरसदी खाजा, और द्रुत ताल में सुनते हैं सरगम। साथ संगत तबला श्रीकांत भावे और हारमोनियम शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग ललत गौरी, कलाकार सानिया पाटनकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सानिया पाटनकर द्वारा प्रस्तुत राग ललत गौरी। आपके साथ तबले पर थे श्रीकांत भावे, हारमोनियम पर थी शुभांगी भवसार। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सानिया पाटनकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरागी तोड़ी। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है धरले ध्यान गुरुजन का, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है लग लागी तुमसो और सरगम। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्याय और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग बैरागी तोड़ी, कलाकार सानिया पाटनकर।

श्रोताओ, अभी आपने सुना है राग बैरागी तोड़ी। कलाकार थी सानिया पाटणकर। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन सुनेंगे. कलाकार हैं साकेत साहू. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनिरुद्ध मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है साकेत साहू का राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present

0: अभी आप राग बागेश्री पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे साकेत साहू। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको झपताल पर तबला वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाखा मुखोपाध्याय। तो लिए प्रस्तुत है झपताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वाज साकेत साहू। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime, Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Jhaptal. Our artist is Gauri Shankar Kormakar. Accompanying him on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay. Listen now to the tabla in Jhaptal. Our artist, Gauri Shankar Kormakar.

0: अभी आप झपताल पर गौरी शंकर कर्मकार से तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाखा मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Gauri Shankar Karmakar. Accompanying him on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई ठुमरी मिश्र झिंझोटी राग में। सात संगत है हारमोनियम पर अरविंद थत्ते, तबले पर चंद्रकांत कामत, सारंगी पर लतीफ अहमद खान। आइए सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई मिश्र झिंझोटी राग में ठुमरी।

अभी आपने पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की मिश्र झिंझोटी राग में ठुमरी सुनी। सात संगत की थी, हारमोनियम पर अरविंद थत्ते, तबले पर चंद्रकांत कामत, सारंगी पर लतीफ अहमद खान। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर की गाई ठुमरी राग जोगिया में, बोल है पिया के मिलन की आस।

अभी आपने विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर की गाई ठुमरी सुनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी। बोल है कैसे बंसी बजाई रामा सुध विसराई। तबले पर साथ कर रहे हैं नाना मुळे। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर।

श्रोताओं, अभी अपने विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी सुनी। अब सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी। बोल है, रस के भरे तोरे नैना सावरिया, तबले पर साथ कर रहे नाना मुड़े, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वाला बलकर।

अभी अपने पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी सुनी। तबले पर साथ की थी नाना मुड़े ने, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है अंजनी कुमार मिश्र का गाया शास्त्रीय गायन. आप सबसे पहले राग शुद्ध सारंग प्रस्तुत करेंगे. विलंबित ख्याल के बोल है मेरो मन हरो जो कि एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत ख्याल के बोल है विनती करत मैं तो हारी जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ हारमोनियो पर है इलियास खां और तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का गाया राग शुद्ध सारंग। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग यवन। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और बोल है माई मोतियन करूंगी। द्रुत ख्याल जो कि तीन ताल में निबद्ध है, बोल है भवन न भावे रे रैन दिन श्याम। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे प्रमोद कुमार मिश्र और हारमोनियम पर है इलियास खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का गाया राग यमन। आइए अब सुनते हैं रुनाडे का गाया राग सरस्वती कल्याण। आप द्रुत ख्याल प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल है तेरो ही नाम रटत। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ठाकुर प्रसाद मिश्र और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं इलियास खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रूना डे का गाया राग सरस्वती कल्याण। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादी खां का गाया राग बैरागी. समित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Ustad Gulam Sadiq Khan. First listen to Rag Bairagi. The Vilambit Gat is set to Ektal. The words are Kaj More Banave and Drut Gat is set to Teental. He is accompanied by Nawab Ali Khan on Tabla and Sajjad Ahmed on Harmonium.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है, बोल हैं गर्जे घटा घन। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बैरागी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। नाउ लिसन टू राग मेघ। मध्य लय गत इज सेट टू झपताल। The words are Gharje Ghata Ghan.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड बाय नवाब अली खान तबला एंड सज्जाद अहमद ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा।